0: Surkar dum do ina ICTC ya HIV test rontivero le.
1: हाय दोस्तों, आपके आर जे 100.7 FM जो ओए में आप सबके साथ। दोस्तों, हम आज के दिन की शुरुआत जो है 100.7 FM जो ओए में स्तुति गीतों से करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, हमेशा हमें एक बात जो है याद रखना चाहिए कि फैसला जब ईश्वर का होता है तो वही सर्वश्रेष्ठ होता है। और जो प्रभु द्वारा कृपा पूर्वक एवं निःशुल्क दिया गया है वही संसार में सबसे ज्यादा कीमती है, जैसे नींद, शांति, हवा।

हवा, पानी, प्रकाश और सांसें, ये सब जो है हमें मुफ्त में मिल रहा है। सोचिए जरा कि आप अपने आप को बेनसीब या ऐसे सोच रहे होंगे, तो ईश्वर ने हमें क्या नहीं दिया? हमें सांसें दी है, ये तो बहुत बड़ी बात है, और नींद, शांति, हवा, प्रकाश, है ना, ये सब जो दिया है ये बहुत बहुत अमूल्य है, बहुत बहुत कीमती है। इन्हीं शब्दों के साथ आइए चलते हैं गीत की ओर। दोस्तों, गीत बहुत मजेदार है, ये रहा मन को बहाने वाला आजा प्रभु। पुकार करते हैं प्रभु के दिन की शुरुआत के लिए, डेविड सिंगर द्वारा गाया गया ये गीत आप सबके लिए। लीजिएगा आनंद।

दोस्तों, चांद, सूरज, तारे भी ईश्वर के सरगम गाते हैं, हम मनुष्य ही पीछे पड़ जाते हैं। आइए हम भी चांद, सूरज, तारे, इन फूल और इन प्रकृति द्वारा ईश्वर की स्तुति जो होते देख करके, है ना दोस्तों, हम भी अपने मन से, पूरे मन से ईश्वर की स्तुति गुणगान करने की कोशिश करते हैं। चलना चाहूंगी SMS की ओर। यहाँ SMS जो है मिंग मोहिते की ओर से आया है। इन्होंने कहा है, माँ मोहन पुई नमस्ते, ड्यूटी नामले रोंतिया मिंग मोहिते, थैंक यू नंगपो, गुड मॉर्निंग MM ले, नमस्ते MM, नंगपो हुन मन नाम निलेगा हुन लिमोम तकमंग तोरिन दोसक न कलांच्या वो इन्नी ही निठाई तान लो निरोजे ओ चौन। यहाँ पे काकते पाबिल खुटलीर की ओर से इन्होंने कहा है, अर्जी मोहन पुई नमस्ते कहा है इन्होंने, आपको भी नमस्ते। इलप ले ले तुरखा पार पारी पू गुड बॉय मिंग मोइते आ ओमेगा सांगते अंगूरी साइलो ले तान कहलाने कह करके इन्होंने हम सबको सॉन्ग जो है, नेक्स्ट गीत जो हम प्ले करने जा रहे हैं, डेडिकेट किया है। इसी तरह से मैं भी यहाँ से काकते पा के लिए डेडिकेट करना चाहूँगी। और खाते पा नौपो वही नीलिम तका इंगे निठा तका हुन मंग तोरिन दुसकना कन लांचिया चौन इंगे निहे कन तानी रोंतिया कन लोमे में मई तान करोंती लेद वेनी से। अगले गीत की ओर चलते हैं। अगला गीत कम सुंदर नहीं, बहुत बहुत सुंदर है दोस्तों। ये रहा प्रभु मेरे, ये जो है पी लल नुनमो या एन पार्टी, ठीक है ना। यहाँ पे पी ती ही पी और लेटर पी, पी आई निलविन पी लल नुन मोया एंड पार्टी द्वारा गाया गया गीत प्रभु मेरे। ये गीत आप सबके लिए जाता है मेरी ओर से।

प्रभु मेरा सृजनहारा, बहुत बहुत मार्मिक गीत वाकई में दोस्तों। और मैं कहना चाहूंगी, क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने पैसे हैं, कितने लाख हैं, कितने करोड़ है ना दोस्तों। घर बार या गाड़ियां जो भी हो, खाना तो बस एक ही थाली या दो ही रोटी तो है ना। जीना तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि कितने पल हमने खुशी से बिताए हैं और कितने लोग हमारी वजह से खुशी हुई है। ये जो है जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए दूसरों के लिए खुशी का कारण हम ही हो, ऐसी कोशिश जो है हमें हमेशा करना चाहिए। चलना चाहूंगी अगले गीत की ओर। अगला गीत आप सबके लिए ये रहा। द विश्वासी द्वारा गाया, द विश्वासी ठीक है ना, द्वारा गाया गया एक और गीत, मेरे गुनाह की। ये गीत जो है आप सबके लिए जाता है मेरी ओर से।

दोस्तों, विश्वास के सकारात्मकता का असली आधार विश्वास, ठीक है ना? ये विश्वास ही सकारात्मकता का असली आधार है। जैसे गीत में हमने सुना, भुगतने वाला या उसे प्राप्त करने वाला कितना धन्य हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत जो रहेगा हम सब के लिए, ठीक है ना दोस्तों, भारत गीत है, यशोवा बैंड द्वारा गाया गया बहुत ही सुंदर सा गीत। ये रॉक एंड रोल एल्बम का है। और दोस्तों, ये गीत जो है ना, हमें इतना सुंदर सा संदेश देता है, इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि ये गीत जो है, दिल और मन से आप सब इस गीत की ओर गौर करें। आप सबके लिए, हम सबके लिए, ये रहा भारत गीत।

दोस्तों, वाकई में बहुत बहुत मार्मिक में क्या कहूँ, मन को छू लेने वाला। यीशु ने सिखाया कि करो तुम दुश्मनों से भी प्यार, इतना महान संदेश है। और साथ ही साथ ये गीत जो था, दुआ भारत को सलामत रखने के लिए था। मैं जाना चाहूंगी SMS की ओर। जेलसा की ओर से इन्होंने कहा है, हेलो आरजे मोहनपुए, नमस्ते सुप्रभात कहकर के इन्होंने हमारा सबसे पहला SMS

इन्होंने जो अपनी तरफ से दिया है ये ऐसा है। शुभ प्रभात आपको भी और नमस्ते। वो इन श्रीसेल न छतक ने या त्वांग तका इदिउती थे नान ले इथिल ती कोंग तिन रे गा मुइंगिल जेल थे नान दो सकना इतान कलाने रोंते का वाहन लो में मो थैंक यू लु तो को इप्ले ले इप्ले लिस्ट नी जोंग जोंग खा इदिउती पुई तो ने इंतान ले कंट्रोल रूमा ड्यूटी ते ड्यूटी ऑफिसर तान ले उमातलोंग मिशन वेंग ले पुसांग मा मते नोपा मिशन वेंग खंग अमी तान ले उटीपी या ngurdua ta tan le rjv elitan po rontini voin duty nuam le nuam ule rontia kan zawai tan he do sakna min ron lan ni jelal sa makan wa han lom tak em o chuan voin nia nong po hun nuam tak lim limom tak mang turin do sakna ka hlan che kan hlangai thak le tur tun segment b ka pakhat che kan ngai tha le the to do na chu chu itan liao liao garanti e o ha chalna chahongi antim git ki aur दोस्तों इस गीत के साथ साथ मैं यहाँ से इस सेगमेंट के लिए साइन ऑफ करूंगी लेकिन मैं लौटूंगी आप सबके लिए 10 बजे तब तक के लिए मेरा फिर से इंतजार कीजिएगा आपके अर्जुमान भी 8.7 एफएम जो ओए में रॉक एंड रोल ये टाइटल सॉन्ग है यशिया बैंड का ये रॉक एंड रोल एल्बम का आप सबके लिए मेरी तरफ से।

हाय दोस्तों, आपकी आरजू मोन पी 100.7 एफएम जोवोई में आप सबके साथ एक बार फिर आया समय फिर से हिंदी गीतों का आनंद लेने का। दोस्तों, ये रहा आप सबके लिए सबसे पहले गीत के तौर पे अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया एक ऐसा गीत, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। ये जो है अनुराधा पौडवाल की आवाज़ और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में हम सुनेंगे आप सबके लिए मेरे ओर से।

मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में था दोस्तों, और मैं जानना चाहूंगी आपके SMS की ओर, यहाँ कहीं SMS आए हुए हैं काकते पाबिल खुटलियर की ओर से, और ये मनपुई नमस्ते पल पल सोंखा हरी सोंखा रुंतिया सन गाई ला इला इतान ले गाई छतु ते तान कलाने रुंते ने है लाही कन गाई संघाल थे मई थे ओ पल पल हर पल इति ना कश थे आमे काकते पाई लो गाई चांग दोन ने के वाल हियान इन फर्न मनपुई अब मकवे त्या मकवत नहीं tu wang zhuan yin amak em wang yin mo min lo om pui zhar zhar don nia o na kin a po Facebook live te po la ron om do na tu ta zhuan yin kan ron chuak le le do na ni o ke wa la wo na pa em po ni se kalom le mai he ava mak ve ti tu ra sms ti thon na min lo ngai thla chim chim kha itan liao liao kan ngai thak le tur hing hak te pa du zong kan play don boka ha aur yahan pe jil zam ki aur se inhone kaha hai arjun mohan pe namaste namaste aapko bhi namaste and is segment ta kalo in report or tia ka van lom tin em next song itan le zem bok lamami ba sam se nyang itan sia album thur in kan lan na pange ronti ni ole ole basam se nyangi kha vo india ron lang silo ke karon lang tanul boksia tro jelal sama eng poni se atan special pokhan vum thura pokhan vum le zwalin o chuan nang matan karon tia tui takai ngai thakatan kan ngai thak le torte and yahan pe mengmoi te ki taraf se ma mon pui pon thui thiam pulal zamatan jel zamatan ronte ne pulal jam jel zam he pon thui thiam de ani nge anyang le he anron sei le thinta chuwang chan la thui tir ve nge chunga yang tro mengmoi te tan kan tip tel boka lo thei lo ta chuwang chan in tui takin lo ngai thadon ya o yahan pe hitendra das asam ki or se good morning rj ji kehkar ke inhone hame yahan pe likha hai barish ho raha hai aur akashvani sun raha hu hitendra das asam ki or se bahut hi acha lag raha hai aur ha yahan pe bhi bahut बारिश हो रही है और ऐसी बारिश में है ना क्या है ऐसा गाना और गीत सुनना बहुत मजा आता है सो हितेंद्र दास जी आपने हमारा साथ दिया और इसी तरह आप क्या है गीतों का आनंद लेते जाइएगा नेक्स्ट ट्रैक जो हम सुनने जा रहे हैं आपके लिए मैं डेडिकेट कर रही हूँ चलना चाहूंगी गीत की ओर गीत है सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में पल पल हर पल गीत आप सबके लिए ये रहा

लगता है कि आप सबको पसंद आए होंगे। दोस्तों, मैं जानना चाहूंगी आपके एसएमएस की ओर, यहाँ के वाला की ओर से एसएमएस आया है। इन्होंने कहा है वो इन लल्जा मचो हो लंगजुई लो ड्यूटी सिया रोंते रोंनुई एम तानी के पो चु चु कलों गई तो आ कखों गई बॉक्स या मो मासे कन रोन ड्यूटी तो बॉक्स या इन पो नि से जे लल्जा मा ए रोन ड्यूटी ले थोई दोननी ओ के वाला नि लोथन जेल रो और यहां पे खाकते पा लिखता है आज मन पे का थन मिन प्लेस सकवांग इन कलोम जे एंटीना नि थप्ले ले तुर जोंग सोंग खा इतान कलान फाइव वे केरन ति ने गवा हलोम ते लुल लेम खाकते पा ओ मि लोंगाइ थ जेल दोनिया वे कुंग ते रन लंग हलोल मै हेले वइनचु इन्होंने लिखा है कपुवाल अमक वकेम नि ओ आरजी उमान पुई शंगाई लो नि ओम शिम मखंती ह्लुई मै चो आ आमे अन लो छाक थिन ते हन रोन तिता नि मो आरजी उमान पुई ngai मान पुई ngai दम रो ओ कपुके वा लहि चो मिर्गी नदना अवे थिन ओए मिर्गी नदना ति खोइ टंगै छियात नि हव बॉय छाकेम आ मिर्गी नन्न चुई शा एम के वाल उना पामो मिल्लो इशियात ले शियात लो मिल्लो शिल दोन निया ओ चौन वी कुंग तिया ngai dam ओ एंग पोनी से अव मगवे अरोन तीखा एंगे नियांग तीखा चो निया कशा थियाम थो वा मासे कन शा थियाम लो दर लो कंगे ओ यहां पे अगला एसएमएस जो है एलबी रिंखे की ओर से इन्होंने

ने कहा है आर जे लो लंग वे ए इप्ले ले स्टनल इप्ले ले तुरखा इतान ले एफ एम गाय थसोंग सोंग तान ओरन ती ने एल बी रन थे यानी एल बी रन थे नंग मा कन मै लो चे आ नंग मा तान करोन ती लेत वे आ तुइ तकिनि लो गाय थांगा चान वी कुंग ते पो इतान करोन ती आ कन गाय थाक तुरते तुइ तकिनि लो गाय थदोन ने ओ जेल जा मै हाले खता हे आर जे मोन पुइ एफ बी ल मा इ लाइफ थे दोन मो रन त्या अवन हैप्पी कवन हैप्पी सी एम रन त्या मो dar ni le tia nithin kha khatti huna khanin segment to om lawa kalawul lom to veo angring a amma ero chu hei dar som pani atanga som pani le som li in kara ti aron ni le ta bok si a chu wang chuan chu ti huna chuan in fb in kan life bokanga hetlaya in sms te kan chhiar le bokanga chuan la te kan plenga kan ti ti hawanga la te kan ngai thla ho le donani ha yaha pin hone ka ha he तो पतोपा चान हिंदी सेगमेंट पो एफ बी लमा लाइफा कन आर जे तेन कन इन कॉमिन अन सखमेल कन थिर वे थे दोन तम मरोन तिया चान कन हो ते अन थोरिम कन हो तु ते ओ ति न तुर न्यांग अन थोरिम ना फकिन ओमल रोसे कदु थु सा मथलें किमता नेक्स्ट सोंग लोम थु सोइनान कन ड्यूटी ऑफिसर ते तान ले कंट्रोल रूम मा ड्यूटी ते तान सियाल बिक रिया विन कन थन सखना पंगे रन ते नि ओ ले नि एतरो हे एफ बी लाइफ te an om chowa ani na chuanin radio hi enge tia zo na po radio chu ngai thlak thei device mo khatang anga enge ne general knowledge a po om thin te nia ma se khovel changkang chhoze la chu wang chuanin fb life a teng te po radio a thok tu te pawang tu te po kan han lan ve te nga ya ani na taka chuanin ke ni tan chuanin lang mia lowa he lang ang taka nal ve in ti nal ve po ni lo mo in ti tel o in tinal ve taka hetia han puan trol trol kha nuam kan ti zong tak kha nyam ne fb lan tak hi chu enge al limom thowa nuam em em rualin lan lo po khan kan lim em em tho mo ma se chunga tlak chuan in kan ron lang zel mai ne ang chu eng po ni se nang ma ni mu tel thei te hian in han ni lo lo se thatur ne eng po ni se te ta ke ngai thla ka tan jelal zama next song itan कंती ओ चलो चाहूंगी अगले गीत की और अगला गीत दोस्तों बहुत सुंदर है आप सबके लिए ओ हमदम सुनियो रे ये गीत जो है मेरी तरफ से आप सबके लिए।

0: उधर नहीं जा सकते, एक्सीडेंट हुआ। यू टर्न करो और वापस जाओ। चलो चलो चलो।
1: ओके सर,
0: एम्बुलेंस।

हाँ दोस्तों, गीत था ओ हमदम सुनियो रे। वैसे रिकॉर्डिंग इतना अप टू मार्क नहीं था, फिर भी हो पाया है दोस्तों। जैसे यहाँ पे था वैसे ही प्ले कर लिया, आप सबको पसंद ही आए होंगे। वैसे गीत बहुत ही सुंदर था। सी जिट की ओर से यहाँ SMS आया है, इन्होंने कहा जी भाई हन मन नामले बहुत मया रंते ने सी जिता इलो लंगते के शेयर का पान लोम एम और नकिना तोपलिंग इन मिन लो निलेन पुई दोन्या ओ मन फोट चुआन चुआन यहाँ पे कन गई थाक लो ले तोड़ते सी जिती तान करों दिया। और यहाँ पे जो है के वाला की तरफ से फर्नुमान पुई मेंग मोईते पो रुतवाई खोर तोरिन रम नोया अकल अंत्यामी रोंत्या रोन नोई न समय ओ अंत्यामी मिंग मोई ते खा अकल अंत्यामी एंपो नि से अशियाते न रोन छांग ले वत मयंग ओ सदेव देव ट्रंग पो हियानिन श्या थे न नै रेव ते हि कनोम थे न चो वांग जानिन हे दिलाया मिदंग दे एंगे ने वी कुंग ते ते पो खान लो से दे थेता ने जिल ललजा मतेंग ते पो खान लो से जोग दे थेता मो जो वान जान इन एंगे इन ती ती लो वेल मो ओ दिखान इन रुन सोई जेल उलत रो। और यहाँ पे दुआ ते रुन लंग मया इन्होंने कहा हाय आर जी मोन पुई के इन एंगे ने हे हे खा जिया ही कंगाई चे ए इंगे नियांग ओ हेलाई तखि मोइ रोन टाइप वे बोर बोर ता चोन ओ एंग पोन इसे कलोम लो तो कंगाई चे तीखा अचियांग ए मेम ता चो वांग चोन इन के पोन कंगाई ज्या चे ही ओ दुआ ती रोन लंग लोल मे कलोम हे नि अ तीर टंग इन कंगाई थलोवा तु तिंग ए इड्यूटी पुया रोन तिया हे तो ना हियान इन ngoro ka di ka duty pui te hi mo ka thian thar te fek an nia ingtin nge ni a fi in ti mi kha pa hat kha aming pum chu thil dang dei ani ta mo khatiang te chuan ani na ta ka chuan ngoro o kan shil lo kang che o heta hang ka duty pui te hi mo ka thian te hi vo in nia hian fakzuali english ania chuanin aron let le wat don ani o mase engtin nge ni thianu in suidan kha o rj afi he ni chu nangwa ni kha in chevek to zo in chevek to zo ko rj afi in ti voi khat kanin muna ni chu i he le chen duty ho to kha thok ho to si in vo india kan hanin muwa e ka voi khat muna che kan hanin ti ani kha anwam do hle mai vo in ni chu he thopui te kan hanin mutharamo chuan arju mon pui girni ki bimari ti pon kasya ania kapuke wa nat na ti oi girni ki bimar elomo even lo thiam to mm hindi a shim shimin ron type zel la ti khan केवाला एन रो इ उनाउ पा हियान इन मो मिर्गी नत ना वे यति चिया फुंगजोल ति नानिया फुंगजोल रोन अमा इन हिंदी वे किन गिरने की बीमारी तीन मिन रोन शिल फिया लिया चोन तुक तुक मंग अंगचे नत ना नि यति न रोन सोई फिया ले निया ओ एंग पोनी से इलो चंगकांग तले मे हिंदी तेन रन टाइप दे उमल मल मे यवी कोंगतिया चलना चाहूंगी अगले गीत के। और इस गीत के साथ साथ इस बार के लिए मैं साइन ऑफ करूंगी एंड मैं लौटूंगी आप सबके लिए 12 बजे FB लाइव पे। तब तक के लिए मेरा फिर से इंतजार कीजिएगा आपके आरजे 100.7 FM जो ओए में। ये रहा गीत आप सबके लिए, ये जो गीत है खामोशियां फिल्म का क्या खोया गीत है आप सबके लिए।

मेरा समय अंत नहीं हुआ है दोस्तों, इसीलिए मैं आपके एसएमएस की ओर जाना चाहूंगी। केवल ह्यान माने नदना ओम ते।

दोस्तों, मैं SMS की ओर जाना चाहूंगी। यहाँ के वाला लिखता है, वी कुंग ते अमिन गाय गाय लो नुला गई तोर अंगा लुत्तो मुन का चंग वे लो के वाला यान रंती नी वी कुंग ते अन कपु के वाला चुआन अनत न वे चु इन पोम थप पनी मो मानी न न वे ओम तोक ते हिया ओमनिया अतिया इन पोम थप ती ना नी चु हुन रंती ले ते गे बोकता मो वी कुंग ते है इंगे।

हाय दोस्तों, आप सबको नमस्ते। आपके अर्जुमान पर 100.7 FM जवाई में आप सबके साथ। दोस्तों, ये समय जो है हिंदी गीतों का आनंद लेने का समय है और साथ ही साथ FB लाइव शो का कार्यक्रम का समय है। इसीलिए जितने भी FB लाइव में हमें देख रहे हैं, आप सबको भी मैं स्वागत करती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ जो हमें सुन रहे हैं रेडियो पे यानी आकाशवाणी पे, यानी कि FB पेज में ना सुन करके यहाँ पे जिन्होंने हमें सुन रहे हैं, उन सबको भी मैं नमस्कार कहना चाहूंगी। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगी, जैसे आधुनिक युग में हम हैं, केवल ये श्रव्य माध्यम ना हो करके क्या हुआ है, अभी लाइव पेज में भी आप सब क्या है इंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह आप और हम मिलकर के FB लाइव शो के साथ साथ ये जो हमारा हिंदी सेगमेंट का लाइव शो जो है, इसका आनंद आए हम सब मिलकर के लेते हैं। और सबसे पहले गीत के तौर पे मैं आप सबके लिए लाई हूँ तुमसे ही गीत, जब वी मेट फिल्म का बहुत ही सुंदर सा गीत है ये। खास खास तौर से मैं सभी इस वक्त हमें सुनने वालों के लिए डेडिकेट करती हूँ।

दोस्तों, यहाँ मैं SMS की ओर जाना चाहूंगी। यहाँ पे यानी कि स्टूडियो के नंबर पे SMS देने वालों को भी ध्यान देना पड़ता है, देना है, क्योंकि ये रेगुलर हमारा लिसनर्स है। ठीक है, मिंग मोइतिया की तरफ से यहाँ पे हमें SMS मिला है। उन्होंने कहा है, मामवान पुए सोनोहन अरमचुआन त्रिदेव फिल्म गली गली में फिरता हूँ। आई था इला लथन हुन ओम तो सी लो रंते ने नि ए हे ला ही दर खटले मिनी सुंगा करुन लिट ले हुन तान कलो खेक ते आंग ओ मिंग मोइते मिन लो शि थ्याम दोन ने हेतला या हन प्ले लिस्ट इंगे नि दा सा कलो ने तो आ चोन लथन हुन ओ नकिना का हन सकांग से ओ 50-50 कन त्यांगा ओ चान इन 50-50 के मा के के मान 25 नंग मा के मान 50 नंग मा निन 50 आ खत्या अंग खान नंग के ngai te hian in yahan pe he cinema hall la hian hindi film ENVT nem 1993 oi tovel khan kan en ngun ve tin te ania he hall la hian teron noi na samaya JL cinema hall ti hi aizola me JL cinema hall su ke ka she mia ta lo o aizola me a chuan heti hun lai hian in hetlama ke ka 1983 i tir do heti hun lai chuan in JL cinema hall chu ke chuan ka shengai lo ni chu chuan in tuna po ka she lo a chan chu ka aizola ka ron om hnu a hian in JL cinema hall re reng hi lo om to lo mo chu wang chuan in lung len thlak don hle ni kha a tro ngai te a ke ngai te a nuam hle bokang he tang cinema hall hi chu pakhat tal hi chu om ve se tha mu le tro pon se chalna chahungi agle geet ki aur agla geet jo hai aap sabke liye yahan pe lai hu dosto ek aur bahut hi sundar sa geet har janam ke liye aap sabke liye।

sikul pui kon pya lo kapar khatla road phe konan ani he step bul kha kong pui ania ton ma khan jl zodin ar hall le puspa ke sitra cinema hall te kha aizola hia na omvelom jl hi thianglim bera anwa ve deu asin ron te ne ke ngai te a manlaya cinema hall nei thin thu te he chungchang te ron soya mitam tak lungpoleng venge yang khang hun laya heng cinema hall a hun mang pha te ho kha chuan te ro chuan he athala ka po hianin in line na nasa le mai heng hun laya engen ni cinema ni enteng te ho po kha ila sharing in ka ringa ingai thin ngo ten ka ring tro ha dosto me अगले गीत की ओर जाना चाहूंगी। एफबी लाइव पे भी आप हमें फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। यहां अगला गीत जो हमारा रहेगा ये रहेगा आप सबके लिए रातन लंबिया। ये गीत जो है रातन लंबिया चुंगी को बहुत पसंद है, साथ ही साथ पीसी जेसिका को भी बहुत बहुत पसंद है। इन दोनों के लिए मैं डेडिकेट कर रही हूं। ये रहा गीत।

रहेगा। और इसी तरह दोस्तों, मैं आप सबके लिए अगले गीत के तौर पे प्ले करना चाहूंगी, ये सनम पुरी द्वारा गाया गया एक गीत, साथ रहे तू मेरे। ये गीत जो है आप सबके लिए मेरे ओर से जाता है।

विलजामा की ओर से SMS आया है, इन्होंने क्या कहा है देखना चाहूंगी। आर्जमा मोनपुए मो निकुम खान अनिता इनकशिया तुई छुन छुआ बुला कनिन मोटुम आइन इलंग इलंग दंग दै मै नुला ना खत्तम तकते आइन मो इला नुआम ए रोंते हो जेल जामा कनुई तो और मै ने चुम ले थिल रोंजिया कमो लोमोम बक्सिया जाथा बक्सिया मासे कतान सान लोम ओम टप टप मै ने चु छन चु खत्या अंग कमेंट ते खा कंदों खात ल तो कमो खोया पो कलीला कपी कपी ती खा कन हो तो ता कपी ही कन्नी टॉपिक में ने कन कुमते कुमते लो उपवे तो ता मासे हंतवे खंग लांगे लंग मो मासे यंग एट हार्ट मान अखानिन एगे ने कन ड्यूटी तिरवेल हुन लाई खानिन कशिया 2010-11 बोर्ड्स हो वेल खान एट टंगिन कन चंता खंग लाई खानिन आका कुम खमिन रुन जोत सलुतुका chuan ka kumin zawn a satlu tuk tuma ka answer kha he meng moi te te chuan an la sha mei thei a miron zawn a sakta ka sat na satta ka chuan in ka chang ta tuna hian kum som pasari tun kum hian ka ni me ka na kuma kum som pariat ka ni anga chuan kum le a chuan 16 ka ni lenga kum som paru ka ni lenga kha ka ti a chuan ti khan ani char charanga kum som pariat a 18 ti lai dai kan ti mai don lom ti khan in fiam thu khan ka chha ka chang a mo खा खा मिदंग जोंग जोंग पोखानिन केपो खान रोंति सुप सुप नोम वेदु हले मै खत्यांग दे ओरे ले खानिन एंगेने रिल रुआ हे चोन हन यंग फोटेला मेल ते हिचो एंगतिन मा हियानि नेंगेने अचोर तुर ते हिचो कन वेंग एम एम थे चोंग लौता मो मासे हेत्यांगा एंगेने कमेंट क दोंग खा कलो मे मेमनि ते करन सोइना नि चो जेलल जामिति लोमम लुत तोके कपूल अब नहीं खा चलना चाहूंगी अगले गीत की और अगला गीत कम सुंदर नहीं बहुत बहुत सुंदर आप सब के लिए मैं यहाँ प्ले करने जा रही हूँ आवन जावन गीत। ये गीत जो है मुझे बहुत पसंद है, आप सबको भी पसंद आए होंगे। प्रीतम अरिजीत सिंह निकिता गांधी और अमिताभ भट्टाचार्य इन सब की आवाजों में हम इस गीत को सुनेंगे। ये रहा आप सबके लिए।

आया फिर से हिंदी सेगमेंट का दोस्तों, हिंदी गीतों का आनंद लेने का। आपके आरजे मोनपुरी आप सबके साथ 100.7 FM जोवे में। दोस्तों चलते हैं गीत की ओर तुरंत ही। गीत ये रहा, आए हो मेरी जिंदगी में। अलका याग्निक की आवाज में हम सुनेंगे। ये जो है राजा हिंदुस्तानी फिल्म का एक बहुत ही सुंदर सा गीत है। ये रहा आप सबके लिए।

दोस्तों, मैं जानना चाहूंगी आपके एसएमएस की। और यहाँ एसएमएस आया है, देखना चाहूंगी। किरण चंद्र नाथ की ओर से जो एसएमएस आया है, हाँ ठीक है, आपका एसएमएस हमें प्राप्त हुआ है, आप सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और इसी तरह से यहाँ पे वी कुंती राय रात्य की ओर से इन्होंने कहा है, और जो मानपुई ईश्वरी लेंगते अंदम चीनेम इरोन कल संदे सिया अंतले अंतले येम रंतिया अंश्रथ्याम वे तो लो तो कमो गदेव ती ही जो अंचल लाई खानिन कल वे ते खान गे अंगे न वांग खानिन करोन फ्राई थोपेंग वे आ अंश्रथ्याम वे तो लो तो का चुआनिन अंदम छा लोम कंदम छाए पथियान जा रहा ओ विकुंग ते अनंग पोलो दम छरिंग रो। हितेंद्र दास यहाँ पे लिखता है, हाँ प्लीज प्ले द सॉन्ग तेरी मेरी। अच्छा, ये तेरी मेरी कहानी, ये बॉडीगार्ड फिल्म का है ना, ये मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। और इन्होंने कहा है, ऑल आरजेस एंड ऑल स्टाफ मेंबर्स ऑफ आकाशवाणी को डेडिकेट करना चाह रहे हैं। एंड ही मेंशन अबाउट हिज फ्रेंड्स एंड द नेम्स आर मिनाल, रमेश, अमल, बिमल, रेकेवेलिक, नारायण, शिवा, दुर्गेश, विक्रम, स्वरजीत, भाईकुन, अविनाश, अंकित, महाराज, प्रेमजीत, इन सब के लिए इनकी तरफ से जाता है, यानी कि हितेंद्र दास की तरफ से। और हितेंद्र दास आपके लिए भी, और ये गीत जो है मैं अवश्य ढूंढूंगी, ठीक है ना। और फिर क्या है, प्ले करने की कोशिश अवश्य करूंगी। लेकिन एक गीत जो है, पल पल दिल के पास, ये जो है F4 यानी कि अजय सिन्हा मिक्को की आवाज़ में हम सुनेंगे, और इसके पश्चात आपके फरमाइश गीत की ओर हम जाएंगे, ठीक है। चलना चाहूंगी गीत की ओर, ये रहा आप सबके लिए।

दोस्तों आया समय आप सबसे विदा लेने का। आपके आरजुमान पे 100.7 FM जोन में आप सबके साथ दोस्तों अंतिम गीत के तौर पे मैं बॉडीगार्ड फिल्म का तेरी मेरी प्रेम कहानी, ये जो है हितेंद्र दास द्वारा फरमाइश गीत में प्ले करूंगी। और मैंने सोचा था वक्त होगा लेकिन वक्त नहीं बन पाया, इसीलिए मुझे माफ कीजिएगा। मा मोन पुई थ्वांग तकिन होंग चे और अंतिया जेल जा महियान चुआन मिदंग पो मिंग मोई ते पो मिलो से थियाम श्याम ला ए ला पथुम पो कन प्ले थाथुम मन चे लो ने हे अछन चो निचिन प्रोग्राम खा लो से ता अंग रेंग सिया चो वांग चुआन इन तुना हियान साइन ऑफ लो हुन ता देर मई सिया एपो नि से कलो लेट ले हुन तान कन खे कंगा अमसबेरा इदु जोंगते प्ले कन तुम दोनिया चुआन। जितने भी हमें SMS देने वाले हैं, जितने भी हमें सुनने वाले हैं, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। इन जवाय चुंगा कलोम ए मे मने। हाँ, इसी तरह अंतिम गीत आप सबके लिए छोड़ जाती हूँ दोस्तों, और ये गीत जो है खास खास तौर से हितेंद्र दास और उनके साथियों के लिए जाता है। और आप सब हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आपके आरजुमान भी 100.7 FM में आप सबके साथ। बाय बाय।

0: ayang jam si ti lakan ngai thak tak ron satu kharobar kelal chuan omani ole kati zong kha tun chum zairi moi huna kan ngai thak hau the te chu ani he akashwani aizol fm zawai za point pasari changa pan chho ani voina tana kan hun tho khatna kan lo mang zauta a program pang tu hi larin filisai lokani a engineer duty larwat zwala ani kan program thoni na hi dar kaidar li le achan via ain chanang ngai thatu te in zawai ni le nom bek ule
1: गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने यह बात आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी एनसीओआरडी की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कही।
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी।

0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइन आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना के 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। आज आशुराए मुहर्रम है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप डी के अन्य मुकाबले में अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में तुर्की ने जीत के साथ समापन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Home Minister Amit Shah has called for a united war against drugs, saying the drug menace threatens national security, social stability, economic interests, and the future of youth and the country. He urged spiritual leaders, youth and mothers to come together on a single platform to win this war. Mr. Shah made these remarks while addressing the 10th apex level meeting of the Narco Coordination Center in New Delhi.
4: Today, our country stands at a critical juncture in its fight against narcotics. The next 3 years will determine whether drugs prevail over us or we prevail over drugs. My humble appeal to all of you is that for the future of our nation over the next 100 years, this is a battle we must win. Win with the determination and win through our collective efforts.
3: Mr. Shah said that authorities

नमस्कार दोस्तों, आप सभी जुड़ चुके हैं एफएम जो 100.7 पर। मैं हूँ आरजे एंजिला। दोस्तों, हमारा हिंदी का पहला सेगमेंट शुरू हो चुका है। आज मौसम बहुत ही सुहाना था, बारिश रोज की तरह आज भी सुबह से हो रही थी। मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने साथ छतरी लेकर निकले, वरना आप सभी बीमार पड़ जाएंगे और आप हमारे गाने को सुन नहीं पाएंगे। ये हम नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहले गाना होगा सच है, जिसे गाने वाले हैं कृष्णा, और ये गाना लिया गया है रक्त मूवी से।

दोस्तों, ये गाना था सच है क्या मैंने सोचा, जिसे ब्लू और शान ने दोनों ने गाया है और इसे रक्त मूवी से लिया गया है। और ये मूवी 2004 को आई थी। हालांकि ये दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर में अपना पैतरा नहीं जमा पाया, फिर भी इसके गाने बहुत ही मस्त हैं। हमारा अगला गाना होगा एक कुवारा फिर, जिसे नहीं दोस्तों ये तो इंस्ट्रूमेंटल है, हालांकि हमें सिर्फ गाना सुनना पसंद है, इसीलिए मैं ये गाना चुनूंगी मस्ती मूवी से, गायत्री अय्यर और स्नेहा पांत और मेघा की आवाज में। दोस्तों हम सुनते हैं हमारा अगला गाना।

दोस्तों, ये गाना था राजा ये क्या करते हो। इसे गाने वाले हैं कुमार सानू और अलका याग्निक, और इस गाने को लिया गया है छुपा रुस्तम। हम अपने अगले गाने की ओर बढ़ेंगे, तू है मेरा दिल, तू है मेरे दिल में, और इसे गाने वाले हैं साधना सरगम और हरिहरन। और ये गाना इस सेगमेंट का हमारा आखिरी गाना होगा। जाने से पहले एक मैसेज आया है, उसको हम पहले पढ़ेंगे। जेललजामा वो भेजते हैं, आरजे इंजिना नमस्ते गुड इवनिंग, इप्ले ले तुरखा आगते अपा बिल खुथलियर, मेंग मोइते तान ले जनिना इ ड्यूटी पुइनेन, इन तान ले कंट्रोल रूम ड्यूटी या ड्यूटी तेले ड्यूटी ऑफिसर तान ले पुसांग मा मते नु पा मिशन वेंग थ्लांगमी तान पो अरोंदिया। दोस्तों, हमारा अगला गाना छुपा रुस्तम मूवी से ही लिया गया है, और इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लूंगी। मैं दोबारा जल्द आऊंगी, आप कहीं मत जाइएगा, आप सुनते रहिएगा FM जो 100.7। मैं हूँ RJ एंजिला। तो दोस्तों, सुनते हैं हम तू है मेरे दिल में।

दोस्तों आप सुन रहे हैं एफएम जो ओए 100.7 हिंदी के दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आरजे एंजिला। इस सेगमेंट में दोस्तों हम बहुत ही खुश मिजाज वाले गाने सुनने वाले हैं। हम शुरू करते हैं अलिशा चिन्नई की आवाज में सबसे पहले बेबो गाना।

दोस्तों, ये गाना था बेबो अलीशा चिन्नई की आवाज़ में। अलीशा चिन्नई, जिनका असली नाम है सुजाता चिन्नई, जो कि गुजरात की है, और ये मशहूर है अपने गाने के लिए मेड इन इंडिया, और इन्हें इंडिया का मैडोना भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारा अगला गाना होगा रेस मूवी से लिया गया जरा जरा, और इस गाने में कैटरीना कैफ ने बहुत ही बाखूबी से अपने नाच का प्रदर्शन किया है, और नाच ही नहीं बल्कि गाना बहुत ही हिट भी गई है। तो दोस्तों, हम सुनते हैं हमारा अगला गाना जरा जरा टच में।

0: right this.
1: जरा जरा टच मी, ये गाना लिया गया है रेस मूवी से और इसे गाने वाली है मोनाली ठाकुर ने। आइए हम अपने अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला गाना होगा खुदा जाने।

खुदा जाने ये था के और शिल्पा राव की आवाज में। हालांकि के जैसे महान सिंगर अब हमारे बीच नहीं रहे।

दोस्तों, ये गाना था एक दिन तेरी राहों में, जिसे लिया गया है नकाब मूवी से। और इसे गाने वाले हैं प्रीतम चक्रवर्ती, ध्रुव धीर और प्रियानी वानी। मूवी तो इतना ज्यादा बॉक्स ऑफिस में नहीं कमा पाई, लेकिन इनके गाने बहुत ही हिट गए थे और अपने जमाने में हर एक लोगों की जबान में ये गाना हुआ करता था। हमारा अगला गाना होगा आई हेट लव स्टोरी मूवी से ही। इसका टाइटल सॉन्ग होगा आई हेट लव स्टोरी। और इस गाने के साथ आप सभी से मैं अलविदा लेना चाहूंगी। आप सभी सुन रहे हैं FM जो 100.7। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। आप सभी हमारा साथ देते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, हमारे इस सेगमेंट के लिए आखिरी गाना सुनते हैं आई हेट लव स्टोरी।

नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं एफएम जो 100.7। आरजे एंजिला आप सभी से दोबारा फिर से जुड़ चुकी हैं। दोस्तों, ये सेगमेंट इस रात का हिंदी के लिए आखिरी सेगमेंट है। तो इस सेगमेंट की शुरुआत हम बहुत ही भयंकर गाने से करते हैं, और मैं आशा करती हूँ जो भी सुन रहे हैं वो अपने अपने जगह में इस गाने के साथ नाचना ना छोड़े। तो दोस्तों, आइए हम सुनते हैं डॉन मूवी से ये मेरा दिल।

दोस्तों, ये गाना था ये मेरा दिल डॉन मूवी से, जिसे गाने वाले हैं सुनिधि चौहान। हमारा भी दिल दीवाना है आप सभी के लिए, हमारा दिल कायल है आप सभी के संदेशों के लिए। तो इसी के साथ आपके संदेशों को पढ़ते हैं। सबसे पहले मिंगमोइतिया भेजते हैं, इंजिला इतान ले छना सिलिंग तान रोंतिया जॉन अगस्त बोइन। इंजिला नमस्ते, tlong takin hong la duty le wat la i ho ko nga film khur la next tan aron tia ma tlong a in argentina i o chu cover familiar lo vi o lo ngai thleve mi me te ang alo tia nyam lo ngai thla char char o lal din pu ya falconin RG play le tur kha nang ma tan le lo ngai thlave zong zong tan le RG zong zong tan ka chhian te veng sang sang ami te RC RC arin moya tluanga muan zawa valpuya achin china lo ma te puya te tan arontia। दोस्तों, हम अपने अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला गाना होगा लत लग गई है। उसी प्रकार जिस प्रकार हमें आपके संदेशों की लत लग जाती है, तो दोस्तों जब तक हम गाना सुनते हैं, आप अपने मैसेज का बौछार बनाए रखिएगा। हम आपके मैसेज का इंतजार करेंगे। ये गाना लिया गया है रेस मूवी से, और इसे गाने वाले हैं शामली कोलगाड़े और बेनी दयाल। तो दोस्तों सुनते हैं लत लग गई गाना।

0: दोस्तों, ये गाना था मुझे तो तेरी लत लग गई है। हमारा अगला गाना होगा कोक स्टूडियो, जो कि सीजन 9 में प्रसारित किया गया है, तेरा वो प्यार। और इससे रिक्वेस्ट करने वाले हैं और कोई नहीं बल्कि जो मेरे साथ ड्यूटी में है, हमारी RJ एनेट। तो दोस्तों, हम सुनते हैं हमारा अगला गाना तेरा वो प्यार।
1: स्टूडियो सीजन 9।

दोस्तों, ये मधुर गाना था मोमिना और आसिम अजहार की आवाज़ में, तेरा वो प्यार। और इसे रिक्वेस्ट करने वाली थी हमारी बहुत ही प्यारी आरजे एनेट। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले गाने की ओर, जो कि बहुत बहुत ही मशहूर गाना है और इसे हर पार्टी में गाया जाता है, हर शादी में गाया जाता है। और गाने की बोल है दोस्तों काला चश्मा, और इसे लिया गया है बार बार देखो मूवी से। तो दोस्तों सुनते हैं हम काला चश्मा गाना।

दोस्तों, जो गाना हमने अभी सुना है वो था काला चश्मा, जिसे हर पार्टी में, हर शादी में, हर रिसेप्शन में लोग बजाते हैं। हम सभी इस गाने से वाकिफ होंगे। हमारा अगला गाना होगा धड़क 2 की मूवी से, बस एक धड़क। और ये गाना इस सेगमेंट का हमारा आखिरी गाना होगा। इस गाने के साथ अब इस सभी से मैं अलविदा लेना चाहूंगी। आप सभी सुन रहे हैं FM Zone 100.7, मैं हूँ RJ एंजिला, और हम बहुत जल्द अगले हफ्ते मिलेंगे। आप हमारा साथ मत छोड़िएगा, अपने संदेशों को भेजते रहिएगा। मेरे बाद रहने वाले हैं मिजो और इंग्लिश के आरजे। तो आइए दोस्तों, हम सुनते हैं इस सेगमेंट का हमारा आखिरी गाना, बस एक धड़क।